शरीर तो लेने नाल मन ते नहीं धोता जाता, विचार ते शुद्ध नहीं होंगे। तन नू रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेल कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: रोज
1: अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभाव नहीं बदलता, सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जोड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वो मनुख सहजे कर लें, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वो करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लगे उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभाव नाल शामिल हुंदा, सहज सुभाए होए सो होए, सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है कहने निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर है। इस तरह हजूर कहते ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने, तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है, तन दा कपड़ा मैला हो जाए साबण दी जरूरत है। हजूर कहंदे ने

आण दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी।

प्रथम सनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने अज का सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नू सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत की समस्या है। मनुख का कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख का कुछ लोभ का जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होता। लोभ दा सुभाव है कि पूरा होता ही नहीं, होता ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहता है, अधूरा ही रहता है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने,

0: हिरदा चिंतन तो खाली है, हिरदे च चिंता ही चिंता है, चिंता ही चिंता है। तो इस तरह का दुख महसूस होया क्योंकि जिस लई हार श्रृंगार सी इते सारे साधन सन, पदार्थ परिवार धन संपदा, लक्ष्य ते परमात्मा सी होते है कोई नहीं। तो फिर देख देख दुख पाया, परिवार में वेख्या तां वी दुख, धन संपदा में वेख्या तां वी दुख, मैल माड़िया नूं देख्या तां वी जो है दुख, क्योंकि सखणिया ने सारिया प्रभु दा नाम प्रभु दी बंदगी है ही नहीं। हां जी,
1: सारो दिवसो मजूरी करता तो लाया,
0: सारा दिन मेहनत की थी कि सुख को मौली ला रही, मौली दे पीसना शुरू किया मुगदर देना, ते घर की ले आया छिलके, छराया छिलके, चावल नहीं छिलके, इतनी मेहनत की थी ते प्राप्त की होया छिलके, यही जो है घर दे चले आया है, ते हुण छिलकियां नाल की होवेगा। ईश्वर दे नाम तो बिना जो कुछ भी मनुख लियाया अपने कोल जमा कीता है सब छिलके ही छिलके ने, छराया ही है, तोखी है, ये दाने नहीं है। जिसने पेट भरना सी, जिसने भुख मिटानी सी, ये ते तुख ने, ये ते छिलके ही छिलके ने। हां जी,
1: फेर भयो बेदारी न्याई घर का काम ना आया,
0: जिन्हें बेगारी दे सिर देते, पुराना जमाना हुंदा सी ना, सिक्के हुंदे सन, तांबे दे सिक्के, लोहे दे सिक्के, चांदी दे सिक्के, सोने दे सिक्के, धनाढ़ लोग सिक्कियां दी पंड वजनी हो जाती है, बड़ी भारी हो जाती है, एक जगह तो दूसरी जगह पहुंचानी होवे तो फिर मजदूर लभदे सन, ते मजदूर दे सिर ते ओ पंड रख देनी लखां रुपयां दी, बोझ पले दबिया जा रहा है, पर लखां दे चों एक दमड़ी भी उसकी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, उन सिर दे उत्ते लखां ने पर मलकियत एक दी भी नहीं, एक दी भी नहीं। बोझ है परिवार का, पदार्थां का, धन संपदा का चुकया होया है, अंतिम समय पले एक देला भी नहीं पैंदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारी बेगार कट्ठी की थी, सारा सिर का बोझ जो है कट्ठा किया। हां, सिर दे उत्ते किधरे धन दी पंड वधदी जाए ते हिरदे विच धर्म वधदा जाए तो फिर बैलेंस बराबर रहिंदा, फिर ते बैलेंस बराबर है, संतुलन बराबर है, ते हिरदे विच धर्म है कोई नहीं, सिर दे उत्ते धन दी पंड वध गई है। महाराज कहिंदे ने बेगार है जिस दिन यह तन नहीं रहेगा, यह पंड भी इतने रह जाएगी, यह खाली जाएगा, ये तो बेगार से, ये तो इन्हें सिर का बोझ इसने चुकया, एवं निकम्मी चिंता सहेड़ी। हां जी,
1: भयो अंग रहो जाको प्रभु को इस हिरदा नाम वसाया,
0: जिन्होंने पूर्वले कर्म प्रालभन अनुसार प्रभु दी जिन्हों के ते अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, करुणा हो गई, उन्होंने अपने हिरदे दे प्रभु का नाम वसाया, उन्हों थां दिते। हां जी,
1: सार संगत का पाछा परे आओ जन नानक हर रस पाया,
0: ऐसा मनुख जिस ते कृपा हो गई, रहमत हो गई, ये सारी कृपा ये सारी रहमत उन्हों सत्संग दे चों प्राप्त होई, साधु की संगत दे चो प्राप्त होई, गुरु की संगत दे चो प्राप्त होई, और हिरदे च नाम वसाया ते सुख दे घर की प्राप्ति हो गई। सुख दा घर केवल परमात्मा है, परमात्मा लक्ष्य है, बाकी सब साधन ने। जिस जिसने भी साधन नूं लक्ष्य बना दिता है, जिंदगी सारी तड़पदियां ते रोंदियां ही लंघदी है। सतसंग दा यह फल है कि असी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नूं बना सकीए, ईश्वर में बना सकिए, इतनी सेवा प्रवान करनी। आज रात का भी समागम है, सरदार जसपाल सिंह जी कंडा

शरीर स्वस्थ खेण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरमत विचारां, गुरबाणी विचार, आप सेवा पंथी रतन भूषण महंत तीरथ सिंह जी पासों गुनियाना मंडी वाले उन्हां पासों आप सरवण कर रहे सी। इस माहौल विच, इस सत्संग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश कीते ने, वो मैं सेवा दे रूप विच आप जी दी झोली च पाण दी निमाणी कोशिश कर रहे। सानू साडी होंद नूं अज तक ते विचारकां ने चार हिस्सों विच वंडिया। प्रथम ते परमात्मा, क्योंकि उस विच असी हैगे आ, वो साडे विच है तो वो है। फिर इसनूं इस तरह वो व्याख्या दे रूप विच लैंदे ने, सूरज। सूरज दी किरण है, किरण दा प्रकाश है, फिर जिथे प्रकाश है वो है। मैं फिर दोहरावां, सूरज है एक, फिर किरण है दो, फिर किरण दा प्रकाश है तीन, फिर जिथे प्रकाश है जो कुछ प्रकाशित हो रहे है वो है। परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, और ये सब कुछ जिथे घटित हो रहे है, प्रगट हो रहे है, वो ये तन, वो ये शरीर, वो ये तन। हुण मैं फिर दोहरावां, सूरज है, किरण है, किरण दा प्रकाश है, ते प्रकाश जिथे पै रहा है, जिथे है, जिस तों जिहड़ी चीज प्रकाशित हो रही है वो है। परमात्मा है, आप सत्संगी हो, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब ने इस तरह ही ख्याल मैनू दित्ते ने, क्योंकि सब कुछ गुरबाणी विच है और पातशाह ने छुपाया कुछ भी नहीं, सिर्फ खोलण दी गल है। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना। अपने कोल अपनी गल ते कुछ भी नहीं, ये खजाना है। और गजब दी गल है, इहदे दरवाजे खुलदे ही नहीं। जितना कीमती खजाना होंदा छुपा के रखा जाता, बड़े बड़े लॉकर, बड़े बड़े ताले, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी हिफाजत। कबीर कहंदे ने, रब ते एक ऐसा खजाना है जितना लुटना इन्हें लुट लो, रब ते लुटा के ही राजी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। धन नूं कोई लुटे तो कानून है, समाज है, तरह तरह दे खतरे ने, ते लुटन वाले नूं लुटेरा कहिंदे, लुटेरा कहिंदे। राम नाम दा जिहड़ा खजाना है, कोई खतरा नहीं, किसी प्रकार दा खतरा नहीं। कोई इस खजाने नूं लुट लै, उसे नूं संत कहिंदे,
ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੋਟ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੋਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੁੱਟ। ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਇਸੇ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ

आनंद दा ना ही परमात्मा है, परम धन दा ना ही परमात्मा है, परम शक्ति दा ना ही परमात्मा है। हर मनुख नू परमात्मा चाहिदा है, पर करीबन करीबन उंगलियां ते गिने जाण वाले मनुखां नू छोड़ के प्राप्ति दे साधन सारियां दे गलत ने। ऋषि चाण कहिंदे ने कोलू दे च पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, पर तिलां नू पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नू पेलन नाल तेल नहीं निकलदा। कहिंदा ठीक है, कोलू दे च पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, मनदे, पर तिलां नू पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नू पेलन नाल तेल नहीं निकलदा। मनुख जीवन दे कोलू दे च रेत पा लैंदा, फिर कढ़ना चाहुंदा है परम रस दा ते परम आनंद, परम जीवन, परम सुख, रेत दे चों तेल किथे। मंग ठीक है, मंग नू पूरे करन दे साधन गलत है, गलत है, गलत है। मनुख अपने साधना नू ठीक कर लवे, मंग हुणे ही पूरी, ऐसे वक्त, ऐसे वक्त लंबे चौड़े चक्रा च ना पैना। एक छिंदे च परम रस, एक छिंदे च परम आनंद, एक छिंदे च परम शक्ति, एको ही छिंदे च परम जीवन, एको ही छिंदे च परम धन। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल भास के बीच ना आयो, एक छिन एक सैकंड। संसार देच एक सैकंड देच ते ऐसा कुछ भी प्राप्त करना कठिन है, पर एको ही सैकंड देच परमात्मा मिलता है। जिंदगी देच वो एक सैकंड आ जाए, एक छिन आ जाए, वो निमक आ जाए। निर्माण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत, निमक, निमक एक सेकंड, निमक एक पल, निमक एक दम। सारी जिंदगी हो गई कीर्तन कर दे, और प्रभु ते निमक कीर्तन नाल मिलता है, निमक। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। जद मनुख कहिंदा है और सोचदा है, इन्ना कीर्तन कीता, इतना कीर्तन सुनिया, होया ते कुछ नहीं, शायद गुरबाणी सानू तसल्ली दे रही है, विश्वास नहीं बनता, निमक भरोसा नहीं बनता। एक सैकंड मैं फिर अर्ज करा, मैं एक एक कबूल कर लवा, ते मैं कोई फोकी निर्माणता भी थोड़े अगो नहीं रख रहा। अंदाजन 50 साल दे नेड़े होने लगे गुरबाणी विचार संगतां नू सुनांदे, मैनू इन्नी समझ आई है मिलदा एक सैकंड दे च है। ए गल वखरी है कि मेरी जिंदगी च वो सैकंड नहीं आया, नहीं आया। ए मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई फोकी निर्माणता थोड़े सामने रख रहा, इस वास्ते कह रहा हूं कि एक सैकंड दे च आवना बड़ा औखा है। इसे नू गुरु नानक देव जी ने कह दिता है, आखण औखा साचा ना। ते की औखा है? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मैं चार दफा कह दिता वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, हुण मैं होर कह दिता है, की होया? कोई औखिया ही नहीं। पर जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी कहिंदे ने आखण औखा साचा ना, जिस आखण बारे गुरु नानक जी कहिंदे ने, यकीन जानो जिंदगियां गल जांदियां ने, जन्म लंघ। ओ एक दफा कहन दी, छिन दे च आण दी जाच नहीं आ।

नरक विश्राम बहुजने भरमावणे चित्तहरणं त्रैलोकगमं जप तप शील बेदारणे अलप सुख अवित चंचल ऊंचे नीचे समावणे तव भय भुमंचित साध संगम ऊट नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई, जे किधरे हुई है इशारतन खुल के नहीं हुई, जे किधरे हुई भी है दबे हुए अल्फाजां च खुले शब्दां दे च नहीं, उसका एक कारण भी दिखाई देंदा है। मनुख दा लोभ बार प्रगट होंदा है और बार भी वो कृत है, धन दी पकड़, पदार्थां दी पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जांदी है। क्रोधातुर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बार किसे ते प्रगट होंदा है, दिखाई दे जांदा है। ये ते इस वक्त क्रोध दे जी रहे है। अहंकार बोलां दे राहीं तरह तरह दी कृत दे राहीं प्रगट हो जांदा है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरती है, एक अंदर दा उछाल है। शायद ये कृत भी अंदरूनी बन गई, पड़दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होंदा है, लेकिन काम पड़दे विच होंदा है, छुप के आंदा है। इस कृत नूं सब तो छुपाया जांदा है, हर एक तो छुपाया जांदा है। शायद इसे वास्ते काम दी कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इस दे संबंध विच महापुरुषां ने खुल के कुछ लिखिया भी नहीं है। लिखे हुए ग्रंथ मिलते ने क्रोध दे उते, लोभ ते, अहंकार ते, मोह ते, लेकिन ए विषय बड़े बड़े सतपुरुषां दी कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देंदा है कि काम कृत मनुख सरेआम नहीं करदा है। ए गल वखरी है कि पशु सरेआम कर देने, पंछी सरेआम कर देने और इस कृत नू दिनदिश कर देने, जबकि मनुख ने इस कृत नू रात लई चुने है। पढ़दा ते फिर रात दा पढ़दा, छुप के फिर रात दा अंधकार। यही कारण है कि इस दी विचार भी किधरे होई है बहुत तारीकी देच, बहुत पर्दियां देच, बहुत छुप छुप के होई है। क्रोध दी चर्चा मनुख सरेआम करता है, अहंकार दी गल भी सरेआम करता है, बहस मुबासे देच मोह दा भी जिक्र आम चलता है, लेकिन काम इस दी विचारधारा, इस दी चर्चा, इस दा बहस मुबासा भी करन लई
मनुख किसे विशेष थान चुनदा है और विशेष व्यक्ति नु चुनदा है, हर एक दे सामने इस दी चर्चा करन लग्या भी संकोच करदा है, छुपांदा है इस विचार नु। और यही कारण है चाहे राजनीतिक दुनिया है, चाहे सामाजिक दुनिया है, चाहे धार्मिक दुनिया है, हर विषय ते विचार होइए, यही एक विषय है जो अछूता रह गया। जे प्रातन कुछ ऋषियां ने जैसे के वात्सायन, कोका पंडित इत्यादिक ने काम सूत्र लिखे तो एक कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं ने, थोड़े ने। और हैरानगी दी गल ए है कि इन महापुरुषां ने भी जो कुछ लिखे है काम कृत नूं किवें प्रगट करना है, इस कृत दा किवें प्रयोग करना है, यही लिखे। अगर कोई महापुरुष ए लिखे कि क्रोध किवें करना चाहिदा है, इनूं किवें प्रगट करना है, तो एक गल स्पष्ट हो गई ये महापुरुष नहीं है। अगर कोई हंकार की व्याख्या इस ढंग नाल करे कि किवें हंकारी बनीदा है ते किवें हंकार नूं प्रदर्शित करीदा है और हंकार प्रगट करन दे ढंग दसे, उकसाण दे ढंग दसे, तो ये विचार ये लेखनी कोई धार्मिक लेखनी नहीं है। और इस संबंध च कोई लिखे कि लोभी किवें बनीदा है और लोभ नूं किवें प्रगट करीदा है, तो वो स्पष्ट होवेगी गल कि कोई लोभी लिख रहा है। इस वास्ते ऐसा जापदा है वात्सायन ने या कोका पंडित ने काम सूत्र जो लिखे है काम उभारण लई, काम प्रदर्शित करन लई, काम ही किवें बनीदा है और काम नु किवें प्रदर्शित करीदा है, ये लिखे है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथां दी कोटी देच वात्सायन दे काम सूत्र या कोका पंडित दे काम शास्त्र शास्त्र दर्जा नहीं प्राप्त कर सके। वो एक कामियां दी लेखनी बन के रह गए, कामियां दे पढ़न योग ही जो है रह गए। और अत्यंत वासना विस ग्रसे हुए मनुखा ने अपनी वासना नु होर उजागर करन लई उन्हां नु पढ़ना पढ़ाना शुरू कीता। यही कारण है कि धर्म दी दुनिया च और समाज दी दुनिया च ये ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय नु गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोया है, अपने विचारां विच थां दित्ती है और इस दा जिक्र भी कीता है। ये तो ठीक है कि जन्म दी क्रिया काम आश्रित है, तो जब काम आश्रित है काम बंद हो जाए, काम रहे ही ना, तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है, काम जीवन का केंद्र है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे ने अपने पावन शब्दों विच थां दित्ती है, तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया होया भोजन अमृत दी थां ते जहर बनता है, तंदुरुस्ती दी थां ते रोग पैदा करता है, इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है, तलांजलि विच ले जाता है। और यही बार बार दे जन्म ते मरण दा कारण बनता है।
शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जोना दे पाण दा कारण बनता है। जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मा तक। आप साफ फरमान कर देने, हे काम नरक विश्राम बहु जौनी भरमावण है। इसकी मूल व्याख्या तो इंज बनती है, जब जन्म काम तो होया है, तो काम की अंश जीवन विच होवेगी, लाजमी होवेगी। जैसे मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बिन धारा, पातशाहिंद भी फरमान करते ने, पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। ए गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी इस दी सहयोग दे नाल ए मनुखी तन दा पुतला बनया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने, जिसका नाम है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नू जोड़े है, तो इस पुतले विच मिट्टी है, पानी है, वो वेग भी है। मां दा खून भी है, पिता दा बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम दा वेग भी है जन्म तो ही। इस बिंद नूं, इस खून नूं असी काया विचों कढ नहीं सकदे। ते जिथे उस बिंद नूं, उस खून नूं इस काया विचों नहीं कढ सकदे, तो काम नूं भी नहीं कढ सकदे, क्योंकि तिन्हां दे मिश्रण दे नाल ही ते काया दा ढांचा बनया है, ये पुतला बनया है। पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी। बड़ा सुंदर ये पुतला बनया। तो सतगुरु देव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे। इस उपदेश दे च है काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने, भुख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भुख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तू दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है, जो शरीर देच नहीं समा सकती। वो अधिक वेग पर बलवाशना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके, बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। आज दे समय दे काम चिंतन का हिस्सा बन गया है, काम सोचनी का हिस्सा बन गया है। शरीर देश ते है, ये मन देच भी हो गया, चिंतन देच आ गया, सोचनी देच आ गया, विचारां देच आ गया। ताही ते आज जितना साहित बाजार विच बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे ने, उस साहित्य काम ही काम है।
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰ ਏ ਮਸ਼ਰਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵ ਸੂਰਤ ਗਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨਵੀਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾ ਪਰ ਔਰਤ ਸਵਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵ ਸੂਰਤ ਗਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨਵੀਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾ ਪਰ ਔਰਤ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਵਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਹੀ ਕਾਮ, ਕੌਮ ਹੀ ਕਾਮ ਛਾਇਆ। ਮਾਨੋ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਨੋ ਕਾਮ ਹੀ ਕਾਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸੰਤਰਾਸ਼ੀ, ਤਸਵੀਰ, ਸਭ ਕਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਮ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਯਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੋਚਣੀ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੋ ਕਾਮ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ, ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲ ਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਹੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਕਾਮੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾ, ਪਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵਨ ਤੋ ਕਾਮ ਲੋਭ, ਕਾਮਨਾ ਸਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੋ ਕਾਮ ਅਹੰਕਾਰ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਾਮਨਾ ਬਹੁ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਲੋਭ, ਕਾਮ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਾਮਨਾ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ,
यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप ते ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंचदी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहता है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने हुए कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाने ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरे है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मा, चाहे पत्थर देते उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उसते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जायो, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचिया सी कि जमीन दे मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोनार दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं दुख देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी, और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नूं देखण लई। की है इना मंदरां विच, कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखण जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनूं मजबूर कर रही है, एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है, और खजुराहे दे मंदर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं, मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग दे ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया, हर पासे इसदी विचार इसदी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच।
तरह तरह दीयां तस्वीरां विच और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी, कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है। अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नु इत्थे ही दुख तो के कहना पे है, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहे है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दे बह गया, काम दे दलदल दे फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया, घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैण किथे। कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समूह जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं

ਹੇ ਕਾਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਪ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਜਮ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਪ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤਪ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹਿਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲ ਚਲ ਚਲ ਇਤਨਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਨਹਿਚਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਗੰਮੀ ਮਹਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਗਰ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਾਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜਾਨੀ ਭਰਮਾਉਣੇ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਉਣੇ ਤਵ ਭੈ ਭੁਮਨ ਚਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਨਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਵੇਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੇਗ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਰ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਨ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਹਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦਕਿ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਕਈ
काम देवते नु भी भ्रष्ट करके रख देंदा है, मनुखा नु भी भ्रष्ट कर देंदा है, पशु पक्षी ते इसी दलदल विच फसे हुए ने। बड़े बड़े जपीश्वर तपीश्वर लोभ दा ते त्याग कर गए, अहंकार नु भी सुट के परे भज गए, सता छोड़ देती, लेकिन रूप दा चिंतन अक्सर चलदा रहा, वासना मजबूर कर दी रही, रूप दा चिंतन चलदा रहा। कहानियां ने गाथावां ने इंद्र स्वर्ग तो अपछरा भेजदा है, किधरे मेनका किधरे उर्वशी किधरे तप भंग आउंदा है, विश्वामित्र दा किधरे भ्रष्ट होंदे ने श्रृंगी ऋषि, किधरे वासना दे दलदल विच फसदे ने महान योगी राज मच्छंद्रनाथ। दरअसल कोई स्वर्ग तो किसे अपछरा नु नहीं भेजदा, वासना कल्पना दा स्वर्ग खड़ा कर देंदी है, कल्पनावां दियां होरां खड़ियां कर देंदी है, कल्पना दियां अपछरावां खड़ियां कर देंदी है। बैठा सी राम दे चिंतन विच, चिंतन चल पिया होरां दा, बैठा सी प्रभु सिमरन विच, सिमरन चल पिया अपछरां दा, कल्पना दा स्वर्ग। और जद कल्पना दे स्वर्ग विच अपछरा होवे होरां आवन, तो वास्तविक जगत जो हकीकत दा जगत है इस दे इस ऋषि नु भ्रष्ट होंदिआं देर नहीं लगेगी, जो कल्पना सी साकार हो जांदी है तो भ्रष्ट होए विश्वामित्र, भ्रष्ट होए श्रृंगी ऋषि, भ्रष्ट होए ऋषि महान योगी मच्छंद्रनाथ। ये आम साधारण मनुख नहीं ने जिन्हां ने विचारां दी शिखरता नु छोया सी, जिन्हां ने जीवन दियां बुलंदियां नु भी वेख्या सी, जिन्हां ने प्रभु सिमरन दी गहराइयां नु भी देख्या सी, फिर भी वासना फिर भी कामना और कामना दे च वासना और वासना दी ही कामना, इस तरह काम वासना करके ए ऋषि ए जोगी ए बड़े बड़े जपीश्वर ए बड़े बड़े तपीश्वर भ्रष्ट होंदे रहे, इसी दलदल विच फसते रहे। जीवन सफल करन लई आए सन, जीवन निष्फल हो गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फुने छंद विच इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की थी। और धन जाइए सदके जाइए कुर्बान जाइए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, जो बड़े बड़े बारीक विषयां नूं भी बड़ी बारीकी नाल छूंदे ने और विस्तार से प्रगट करते ने। धन गुरुदेव जी महाराज दा वाक पंकज फाते पं महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज पंक कहंदे ने चिक्कड़ नो, पंकज पंक तो जमया, पंकज पंक ने जिसनु जमया है कमल पदम, चिक्कड़ दी पैदाइश है, कमल दियां जड़ां चिक्कड़ दे चने दलदल दे चने, पर स्वप्न महक खेड़ा ऊपर है, चिक्कड़ तो भी ऊपर पानी तो भी ऊपर। कई दफा
ऐसा हुंदा है पानी घटदा है कमल दी बुलंदी भी घटदी है। जो गगन नूं चुम रहा सी धरती दी तरफ डिगण लग पैंदा है क्योंकि पानी घट गया है। पानी पदार्थ पानी सुख पदार्थां दा परिवारिक सुख पदार्थां दा सुख धन दा सुख मनुख गगन नूं चुम्मण दी सोचदा है लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिता है। वाकई धन संपदा पदार्थ यदि सब कुछ प्राप्त हो जान परिवारक सुख पदार्थां दा सुख धन संपदा दा सुख सता दा सुख ते जद कुछ होर सुख दी लालसा ना रवे या ए पानी थोड़ा जिया घट जाए तो फिर कमल थोड़ा जिया थल्ले गिरदा है ऊंचाइयां थोड़ियां थल्ले आउंदियां ने। महात्मा बुद्ध राजघराने तो ने राजकुमार ने धन संपदा दी बुलंदी देखी सी पानी बहुत सी पदार्थ बहुत सन ऊंचाइयां सन। इसी तरीके नाल स्वामी महावीर राजकुमार ने राम राजा ने श्री कृष्ण राजा ने बहुत सारे भगत संत अगर पदार्थां दा जल भावें थोड़ा सी फिर भी आसमानों नूं छोया तो इन्हां दे पुरबले पुन सन प्रताप सी पुरबले पुन दा पिछले जन्मां दे संस्कार उन्होंने इस तरीके नाल उन्हां नूं प्रेरित कीता ते उन्होंने बुलंदियां नूं छोया। आम साधारण मनुख दी गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल समझांदे ने। पानी घटे है कमल थल्ले गया अचानक किधरे जोर दी बारिश होई और सरोवर विच हड़ दा पानी आ गया बहुत वेग नाल आया बड़ी तेजी नाल सरोवर उपर उठया है। कमल संभाल नहीं सके अपने आप नूं डूब गया पानी च। सिर्फ पानी च ही नहीं डुबया जिस चिक्कड़ विच इसदियां जड़ां सन उसे चिक्कड़ विच खुब के रह गया। मनुख पैदा होया काम तो चिक्कड़ तो मनुखी जीवन दा कमल चिक्कड़ तो पैदा होया है काम तो पैदा होया है। पंकज फाते पंग महामद गुंफिया ये जो इतना सुंदर कमल दा फुल है इते पंक दी देन है चिक्कड़ दी देन है। ए मनुखी जन्म ए मनुखी काया इतनी सुंदर काया इति काम वेग दी देन है इति जमे है चिक्कड़ तो पिता दा चिक्कड़ मां दा चिक्कड़ पिता दी वासना मां दी वासना इति उस तो जमे है इति चिक्कड़ तो पैदा होया है। पैदा तो चिक्कड़ तो होया घर विच सुख वधे आराम वधे प्रभु दा सिमरन चलिया उपर उठिया आसमानां नूं छूण दी लालसा गगन नूं सजदा करन दी लालसा लेकिन पानी घटिया थल्ले आया दुख
और पदार्थों की कमी उलझना कुछ खेड़े च फर्क पांदिया ने, कुछ गिरांदिया ने। अचानक किधरे हड़ दा पानी, किधरे किसी दरिया चो वाड़ा निकले है, उसने रुख सरोवर दी तरफ कर लिया, लबालब अचानक अचनचेत सरोवर नो भर दिता है। कई दफा अचानक धन संपदा दे अंबार मनुख दे घर विच लग जांदे ने, हड़ दी तरह, मानो किसी दरिया दा वेग सरोवर दी तरफ हो गया है, मानो बरखा दे हड़ दा जल सरोवर दी तरफ हो गया है। किसी किसी घर विच, किसी किसी मनुखी जिंदगी ते धन ते संपदा दी बारिश ही हो जाती है, जिवें सरोवर विच कोई दरिया पै गया है, इस तरह पदार्थ आ गए ने, इस तरह धन संपदा आ गई है। अचानक मिले हुए इस धन संपदा ते पदार्थां दे वेग नूं झल नहीं सकया, ठल नहीं सकया, डूब गया। पहले पदार्थां च डूबया, पहले कमल पानी च डूबया, फिर जिस चिक्कड़ दे चिस्तियां जड़ां सन, जिस चिक्कड़ चों पैदा होया, उसी चिक्कड़ विच फस के रह गया। फिर ते अत्यंत कामी हो गया। जद सुनदे आं किसे नवाब दियां 500 बेगमां, किसे राजे दियां 400 राणियां, किसे शेख दियां 100 बेगमां, हैरानगी क्या जिंदगी इसे लई

पास मर्या गया है। और हैरानगी, क्या जीवन सिर्फ इसे लिए है? नहीं संभाल सकया इस हड़नों, जितना धन वधया, जितने पदार्थ वधे उतना ही काम ही हुंदा गया, जितने दुनियावी सुख वधे उतना ही काम ही हुंदा गया। इदी वाशना, इदी काम वाशना, इदी कामना बार बार जाके रुकी स्त्री ते। वैसे ते कामना एक सर्कल दिच दौड़ दी है, एक घेरे दिच, एक वर्तुल दिच। पुत्र दी कामना, मिल गया पुत्र, कामना अगे गई। मित्रा दी कामना, मिल गया मित्र, कामना अगे गई। धन संपदा दी कामना, कामना अगे गई। ये वक्ती तौर के आके रुक दी है स्त्री ते। तो साहित्यकारा ने, साडे देश दे धार्मिक पुरुषा ने स्त्री नू एक नाम दिता है, कामनी, कामना दी मणि। जिथे मनुख दी कामना आके रुक जांदी है वक्ती तौर ते, घूमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है, घूमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है, स्त्री बन गई कामनी। स्त्री दी कामना घूमदी है रुकदी आके पुरुष ते, तो पुरुष बन गया कामदेव। एक कामदेव एक कामनी, स्त्री ते पुरुष दा ए मिलन, कामना दी मणि ते कामदेव दा मिलन होके रह गया। जदके इते होना चाहिदा सी ज्ञान दा मिलन, भक्ति दा मिलन, मिलन स्त्री नू ज्ञान मिलदा, पुरुष नू भक्ति मिलदी, पर नहीं, पुरुष नू मिली कामनी, स्त्री नू मिलिया कामदेव। ज्ञान देव रह गया, भक्ति देवी रह गई, भक्ति दी मणि रह गई। पुरुष दी चमक दमक मत्थे ते उस दिन प्रगट होवेगी जिस दिन भक्ति दी मणि इसते मस्तक दे चमके, और स्त्री दा मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान दा प्रकाश, ज्ञान दा सूरज उस दे मकसद मस्तक पे जो है चमके। और स्त्री पुरुष दा मेल, ये ज्ञान ते भक्ति दा मेल ना होके, इते कामना दी मणि ते कामदेव दा मेल होके रह गया। परिवारक रिश्ते, ये ज्ञान ते भक्ति दे रिश्ते ना रह गए, इते काम देव ते कामना दी मणि। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा भी प्रमाण कर देने, छले कनक कामनी, छले आ गया मनुख दे, धोखा खा गया मनुख कामनी तो, कनक तो जिंदगी बर्बाद हो गई, जीवन भ्रष्ट होके जह रह गया। भक्ति दी मणि चमकनी चाहिदी सी, काम मणि चमक रही है, काम मणि ज्ञान दा प्रकाश मस्तक ते होना चाहिदा सी, काम देव चमक रहा है। और ए मिलन अगर काम देव ते कामणी दा होया, और जीवन भर ऐसा होया, तो इस तो जो औलाद पैदा होवेगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं होवेगी। वो औलाद कैसी होवेगी? धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं।

जो संतान पैदा हो रही है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा। पुत ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है। कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं, लैला पैदा हो रही है। कोई कबीर, कोई रविदास, कोई भाई मनी सिंह, कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके। दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन, उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे, दार्शनिक आणगे, विज्ञानक आणगे, संत आणगे। पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे, तो औलाद आएगी जिन ते भूत। जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे है। जिन भूतां नु काबू करना औखा सी, अजो की औलाद नु काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नु मार रहे ने, तरह तरह के कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं, संयम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममयी नहीं हो सकिया, सिर्फ काममयी होके रह गया। पातशाह कहिंदे ने रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल, बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी। स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण ले निकलती है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे, और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे, तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा, हटदा जाएगा, हटदा जाएगा। अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, इसके अर्थ ने शिकारी। पुरुष शिकारी है, इसे शिकार की तलाश है।
ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ ਇਸੇ ਹੀ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਚਾਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ

इसते भय तो डर दे होया। गुरु दी संगत पकड़ी, प्रभु दी ओट पकड़ी, नारायण दा आसरा लिया। बस नारायण दा आसरा, गुरु दी संगत, यही ओट है, यही आधार है।

क्रोधं कदं करुणा न उपर्जते बिखयन्त जीवं वशं करोत् निरतं करोत् यथा मर्कटे अनेक शासन अनेके शासन ताड़ंत जम दूते तव संगे अधमं नरे दीन दुख भंजन दयाल प्रबनान के सर्वजी रक्षा करो। विद्वाना ने क्रोध नु अग्नि के है बड़ी प्रचंड अग्नि जो मन देचों उठ के तन भी राख कर दिए महान इपरबल अग्नि। क्रोध ता थोड़ा बहुत पशु पक्षियां दिस भी देखन नु मिलता है लेकिन क्रोध दी अग्न मनुख देच बड़ी प्रचंड है बड़ी प्रबल है। क्रोध दैवी गुणा नु साड़ के राख कर देंदा है स्वा कर देंदा है। क्रोध ही मनुख दे अंदर कोई गुण रह नहीं जांदा। दरअसल क्रोध उत्पत्ति दा कारण मनुख एति स्पष्ट है कि कामनावां दा वेग है काम दा वेश है कामना वासना दी कामना धन दी कामना सता दी कामना एक कामना अहंकार दी कामना है धन दी कामना एक कामना लोभ दी कामना है वासना दी कामना एक कामना काम वासना है जिस तो वासना दी तृप्ति हो जाए जो लोभ पूर्ति दे सहायक होवे मददगार होवे जो अहंकार नु पठे पावे ओ मेरा प्रतीत होंदा है उसते मोह आन लग पैंदा है चंगा लगदा है। पर जो वासना पूर्ति दे रोक खड़ी कर देवे लोभ पूर्ति रिच दीवार बन जाए अहंकार सदा प्राप्ति लई रस्ते दा रोड़ा बन जाए तो फिर उस ते क्रोध आ जाता है। क्रोध उस वक्त पैदा होता है जब वासना अतृप्त रह जाए लोभ अतृप्त रह जाए अहंकार अतृप्त रह जाए और जिस दे राही महसूस होवे कि वासना अतृप्त रह गई है लोह अतृप्त रह गया है अहंकार अतृप्त रह गया है बस उसे ते प्रबल क्रोध आंदा है उसे नु ही चबा जान नु जी करदा है रेजा रेजा करन नु जी करता है। पर जो मददगार होवे सहायक होवे वासना पूर्ति देच धन संपदा दी पूर्ति देच सता दी पूर्ति देच बहुत प्यारा लगता है मोह आ जांदा है उसते
ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਲੋਭ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਦਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਦਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਹਾਮੂੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੀ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਗੁੱਸਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਸਦੱਸਯ ਦੇ ਚ, ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਲੇਸ਼। ਪਰ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਯਕਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਣੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਐਸੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੂਪ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਔਰ ਕਰੂਪ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੌਸਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਿਰਗੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਸੇ ਬੀਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
शक्ति है तो क्रोध है, शक्ति है तो दया है, शक्ति है तो क्रोध है, शक्ति है तो प्रेम है। तो क्रोध एक बीज दी तरह है, कुरूप सही कठोर सही लेकिन बीज है। असी देखते हैं कि धार्मिक मंदिरां विच पूजा सथलां विच लोकी फुल अर्पण करते हैं, पुष्प भेंट करते हैं। अगर कोई तार्किक मनुख बारों गीटियां ते पत्थर चुक ले आवे, सतगुरां दे अगों भेंट करे, किसी मंदिर दे चढ़ावे, लोकी कहणगे मूड है, नादान है, ना समझ है, पागल है। पर वो तार्किक तर्क खड़ी कर दे, अगर फुल भेंट हो सकते ने तो पत्थर क्यों नहीं भेंट हो सकते, पुष्प चढ़ाए जा सकते ने तो एक कंकर ते गीटियां क्यों ने नजराने वजो पेश कीतियां जा सकदियां। उसकी तर्क का समाधान इंज करना पड़ेगा। पत्थर करूप है, पत्थर निर्गंध है, पत्थर कठोर है, फूल कोमल है, फूल सुगंधित है, फूल सुंदर है। सुंदरता नजराने वजों भेंट कीती जा सकती है, कोमलता सुगंध अर्पण कीती जा सकती है, कठोरता करूपता ते निर्गंध नहीं। फूल धर्म मंदरां विच देवतियां दे शिंगार बनदे ने, शोभा बनदे ने धार्मिक मंदरां दी। पर जो स्वयं फुल दी तरह हो जाए, अपने मन नूं फुल दी तरह कर देवे, परमात्मा दे कंठ दा ओहार बन जांदा है, उस दी दुनिया महान हो जांदी है, वो ते शिंगार बन जांदा है धर्म दा। जो कोमल हो गया है, सुगंधित हो गया है, और कोमल हो गया है, सुंदर हो गया है, सुगंधित हो गया है, क्रोध ही कोमल हो सकता है, क्रोध सुगंधित हो सकता है, क्रोध बहुत वड्डी सुंदरता अपने विचों पैदा कर सकता है, बीज है। मूर्ख इस बीज नो अपने कोल रख लेंदा है, सेना इस बीज नो गोड़दा है, बोंदा है, और बोना बस यही है अपने मन नो प्रभु नु समर्पित करना, नाम भी जोड़ना। क्रोध नाल भरिया होया यही मन दया नाल भर जांदा है, रब्बी स्वपन नाल भर जांदा है, अत्यंत कोमलता नाल भर जांदा है। इस नूं खत्म करन दा यही इलाज है प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार कितावली दा करता बहुत सुंदर कहिंदा है कि धर्म पैदा किवें आउंदा है, धर्म नष्ट किवें होता है। आखिर धर्म धर्म देच दया आ जाती है, धर्म देच संजम आ जाता है, धर्म देच संतोख आ जाता है, धर्म देच सारे दैवी गुण आ जाते हैं, शील संजम आ जाता है। ये धर्म किस तरह पैदा होता है और ये धर्म किवें विनिष्ट होता है, नाश होता है। तो सार कितावली दा करता इंज लिखता है,

कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नू सत नू रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा शमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो शमा दी सोटी नाल शमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वद्दा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों दी तपस्या नू जला के रख दें कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दियां ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जब खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है हां मर गया ये तो ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करता है। मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनू दुध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦਸ ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟਨਾ ਸੱਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ।

करों और चातर की मत दूर निवारों। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकनगे किथे खड़े हां, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूर दृष्टा रखदे ने, ए भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होंदा है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त फिर दोसी है खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब, कितना सुंदर लिखे है तेरे हम दीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट है। औरंगजेब चल, तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नूं पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बद कारे आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा काम है। तुम बहुत जल्दी की थी, क्रोधी बहुत जल्दबाज आंदा है, तू इसी जल्दबाजी दे प्यो नू कैद कीता, ब्राह्मण नू कतल कीता, भैन जहां आरा नू भी जेल दे पाया। और ऐ औरंगजेब, तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमा दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर, फिर मेरे मासूम लाडले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत, सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी। जितना सियाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

मैं जिस हिरदे च अपना पैर रख देना, वो अपना बिगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोह राजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़े होवेगा, सालां बदी जो पड़े होवेगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध दे सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध दे जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होगा, ये दार्शनिक होगा, ये फिलोसफर होगा, ये चातर होगा। पढ़े हो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड दे भुला के रख देंगा, एक छिन दे भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध, झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल दे चाहे क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल, हे कल मूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते।

हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है और इह सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ए क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर नरतं करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ए क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जाना है। अनेक सासं अनेक

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नो बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नो मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है।

0: भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है।
1: इक स्वान दोए स्वानी नाल।

कर्तार, हे कर्तार, धाणक हो गया। धाणक जो शमशान घाट विच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साड़ियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी, बद अख्तर कस अस्त। मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं आवेगा, उदी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओ ही सिर्फ धाणक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है, और खुद बैठा है धाणक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धाणक बन गया, और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता, दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठता है, इहदे नाल उठ बैठदियां ने,
भौंकदा है कुत्ता, भौंकदियां ने एक कुतियां। रात नू जद सौ जांदा है वक्ती तौर ते एक कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने, पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होता है, मजाल इहदी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजाल जपजी साहब पढ़े, ये मंदिर दी सुरत लवे गीता पढ़े, या ये नमाज पढ़े ते कुरान दी तलावत करे, नहीं, मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आशा ते तृष्णा। थोड़ा जिया लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आशा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसकी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आशा, ये दोवें इतनिया जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नूं, उस लोभ नूं नाल भौंकना पैंदा है, और पूरी उच्ची आवाज दे भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे, आशा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर दें, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दी है,

हमाता भरे जामुरदार न खाए। भराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सूअर खा रहा है मुर्दा सूअर, मरिया होया सूअर। पराया हक इते सूअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनाहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किसी वक्त कहा कि मनुख की आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखिया मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखिया बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खांदा है। भारत दे ऋषि ने देखिया गऊ का मन ते मनुख का मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख दी आखरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनी है। इस तरह मनुखी जिंदगी दी आखरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकौले डार्विन बंदर हो सकती है। अफजल हो गई गऊ, महान हो गई गऊ भारत दे चिंतन देच, देशवासियों दे चिंतन देच, क्योंकि मनुख दी तरह सोचती है, मनुख दी तरह ममता रखती है, मनुख दी तरह दुख सुख महसूस करती है। इसनु मारना ऐसा है जैसे मनुख नु मारना, और इसका मांस खाना ऐसा है जैसे बंदे का मांस खाना। त्रिगत जून है, सूअर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है। तो इस्लाम दीवानी मोहम्मद साहब ने हराम करार देता नहीं खाना, ये सूअर नहीं खाना। कि दिन भर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है, और फिर इसकी गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत इतनी सख्त, ये हलाल नहीं हो सकता, जबा नहीं हो सकता। बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, खाना हराम। पर महाराज कह रहे ने खा रहा है वो सूअर, अगर वो मुसलमान है खा रहे है वो सूअर, अगर वो बेगाना हक खा रहे है, अगर भारत का वासी है हिंदू बौद्ध जैन सिख है, पराया हक खा रहे है गऊ खा रहे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज देवाक, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आशा ते तृष्णा दो कुतियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल आउंदा है, बेहाल आउंदा है, कूड़ छुरा मुठा मुर्दां, भलके भौंके सदा बेहाल। ये आशा तृष्णा भौंकदियां ने, बेहाल कर देंदियां ने।

ए वासना उस समय प्रदर्शित हुई सी, सरेआम हुई सी, नुमाइशी बन गई सी बाजार विच, बाजार ते की धर्म मंदरां विच, मंदर ही काम दे बने। और वाकई जब वासना ही प्रधान होवे तो फिर हर पासे दुराचार छा जाएगा, वो काबले कबूल हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। और ऐसी ऐसी क्रीड़ा होंदी रही इन्हां धार्मिक मंदरां विच जिन्हों अल्फाजां विच अज दे समय बयान करना औखा है, जिन्हों सुनना सुनाना भी कठिन है। पर जे किधरे लोग प्रधान होवे, बहुगिणती दे च होवे, ताकत दे च होवे, तो पाप व्यापक हो जांदा है, छा जांदा है, पाप चारों पासे। बकौले गुरु नानक अज दे दौर विच मनुखी मन दे ते राज कर रहा है लोभ। लबे पाप दोए राजा मैता, कूड़ हुआ सिकदार, काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। लब राजा है, लोभ राजा है, पाप वजीर आजम है। वजीर आजम राजे दे नाल है, पाप ते लोभ दे नाल है। जहां लोभ तहां पाप है, जिथे लोभ है उथे पाप है। लब पाप दोए राजा मैता, ए राजा ते वजीर ने, यही मनुख दे मन दे राज पे कर दें। लोभ पाप, लोभ पाप, लोभ पाप। फिर महाराज कहते कूड़ होआ सिकदार। चौधरी कौन? झूठ, कूड़। लोड़ भी नहीं तो देखे मनुख झूठ बोल रहे है, कूड़ बोल रहे है। और व्यापक पद्धर ते झूठ, झूठी राजनीति, झूठे परिवारक बोल, और झूठ से ही खड़े हो गए धार्मिक बोल। सच दी कोई पहचान नहीं, संत कहलाण दा शौक है। मन कदी प्रभु विच लीन नहीं होया, लेकिन माला दो दो गल विच, दो दो हथ विच प्रदर्शनी, नुमाइश झूठ। धर्म की दुनिया दे झूठ, राजनीति दे झूठ, परिवारक दुनिया दे झूठ, ये चौधरी है। काम नेब सद पुछिए, जद कदी लोभ नू लोड़ पै जाए, पाप दुबदा विच पै जाए, कूड़ चौधरी किधरे कमजोर होण लग पै, ता काम ने सद पुछिए, इस नायब काम नू कामना नू बुला लिया जांदा है। बह बह करे विचार, लोभ विचार करदा है पाप नाल, कूड़ नाल, काम नाल। और काम ऐसी विचार दे देंदा है, लोग भड़क उठता है। झूठ मदद करता है, पाप अंग संग हो जाता है। अंधी रैयते ज्ञान विहूणी, भाए भरे मुर्दार। अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता, कौन मेरे ते राज कर रहे है, और लोभ मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, अकरण करोत अखादं खादं असाजं साज समझ्या। लोभी
ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲੋਭੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮਲੀਨ ਹੈ।

राजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्व देव मानुख पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे। ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां, मनुख दे अवगुण, इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वह गुणा का सागर है, मनुख औगुणा का सागर है। परमात्मा के गुण नहीं गिने जाते, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे, उंज ते अनंत औगुण ने, अनंत औगुण ने। पर मूल कमजोरियां, मूल औगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लिया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणा विच बदलना है। सतगुर मोह तो आरंभ करदे ने, मोह मेरा, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनूं थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच, किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पै है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टुट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटण का दुख है, इसी टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनू पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आता है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह बच जाता है, उतनी ही पकड़ बच जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख का दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोहग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छह वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभ दियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगन दियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गए। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
धीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंग गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर पे दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मानो बच्चा मिल गया है, प्यो नु पुत्र मिल गया है, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आए हो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेखे है, वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेखया, प्यो ने वेखया, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर ले आए। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोदी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लत होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौं गया, हमेशा दी नींद सौं गया।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਕੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੀ ਮਾਂ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਪ, ਮੋਹ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਤੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਕਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਹ ਸੰਪਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਬੌਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਧਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਕੜ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਕੁਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਕੜ। ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਦੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਗੇਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਗੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਗੇਰੀ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमण के रिचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकले है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आखे है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जाता है, इसी ची मनुख तड़क के रह जाता है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इथों ही मनुख दिया मूल कमजोरिया का जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़दा नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ये मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है, मोह नू जित लैंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी चलांदा है, और वो जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ दे च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां भी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखण वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चले, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋਪ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नूं भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुब्बी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है, इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां बना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे च लिपटिया होया एक करूप और महिला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसका बच्चा है? जहां बना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां बना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान की बख्शी करें, ऐ जहां बना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहते ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दिया अखां खोलिया। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नु वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नु वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नु अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ए असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभुदी शरण प्रकट प्रभु का चिंतन करे नाम दे गीत गांदिया गांदिया मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जाता है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उस दे चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी ते सारे दा सारा पराया इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय दे च जीवेगा डर दे च जीवेगा दुख दे च जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख दे च ते भय दे च जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मऊ ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साडे देश देच एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जद ए ना सुनिया राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखे जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाण वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ दे देश जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रालब्ध वश होके संजोग वश होके इना परिवारों दिया टहणिया ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, क्योंकि रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु की लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह की दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह का पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह की पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखिए गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, डंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे साढ़े

0: इतना ही नहीं, पूरी गल सुन।
1: ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें।
0: होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है,
1: नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा।
0: स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नूं देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा, असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ना ताज दा मो, ना तहत दा मो, ना परिवार दा मो, ना संसार दा मो, केवल प्रेम अकाल पुरख दा, प्रभु चिंतन दे नाल, उस दी याद दे नाल मोह प्रेम बन जांदा है, और प्रेम ईश्वर दा रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति, और आपका मूल फरमान साच कहो, सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है, मोह ग्रसे दी भी सीमा है, निरंकार असीम है, प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है, आसरा पकड़दा है, अरजोई करता है, अरदास करता है, और उसकी याद विच डुबदा है, मोह प्रेम बन जाता है, फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हरक ना सोग, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम।

0: 하르 하르 하레.
1: 뭐는 그디냐? 뭐네 아들이 뭘 검소리냐 대처? 바르벌 검소리 아흥가르 아흥 매하 매하 매하 진네 지르탁 에 매랜디에 ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हमें एहा जात है, हमें कर्म कमाए, हमें ए ही बंदना फिर जौने पाए। हमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ दे पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां देच अपने अपने दोष पाए जाते ने, जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी देच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे देच नासका दा रोग। हमें रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन दा अहंकार, किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित हुंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा हुंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा हुंदा है। जोवन धन प्रभ ताकै मद में, اہنس رہے دیوانا دن رات پاگل دی طرح گھوم رہا ہے جو بندی مستی وچ دھن دی مستی وچ اور ستا دی مستی وچ دھن جیب دے چوے یا من دی سوچنی دے چوے جو بن ونت ہوے یا جو بن دی چاہ من دے چوے ستا دھاری ہوے یا ستا دا چنتن اندر چلدا ہوے دوہاں حالتاں پاگل ہو جاندا ہے ستا پاگل کر دیندی ہے ستا دا چنتن بھی پگلا دیندا ہے جو بن پاگل پندی سیما تک لے جاندا ہے پر جو بن دا چنتن بھی پاگلوں والی حالت بنائی رکھتا ہے اسی طریقے نال دھن دھن جیب دیچ ہے دھن گھر دیچ ہے یا دھن سوچاں دیچ ہے وچاراں دیچ ہے منکھ تے پاگل ہوئے گا اس دا بہت وڈا پاگل پن دھن آشرت ہے جوبن آشرت ہے اور ستا آشرت ہے تدی پادشاہ فرمان کر رہے نے جوبن دھن پربتا کے مد میں اہنس رہے دیوانا دن رات پاگل ہویا پھردا ہے اسے وچ اہنکاری اپنے آپ نو مہان سمجھدا ہے دوسرے نو تجھ سمجھدا ہے آپس کو دی رگ کر مانے اورن کو لگ مات منسا باچا کرمنا میں دیکھے دوزک جات ہر ایک نو چھوٹا سمجھدا ہے چاہے اگلا مہان ہوئے چاہے سویم تچھ ہوئے اپنے آپ نو مہان سمجھدا ہے اچا سمجھدا ہے سب تو اچا سمجھدا ہے ایرانی صوفی سنت حافظ فرمان کر دینے در محفلے کے خورشید اندر شمار ذراست جس دی محفل دچ خورشید اے سورج ایک ذرہ ہے ایک نکا جیا ریت دا ذرہ ہے در محفلے کے خورشید اندر شمار ذراست خود را بزرگ دیدم شرط ادب نواشد اس محفل دچ تو اپنے آپ نو آکھے میں وڈا میں وڈا میں مہان ہاں جتھے سورج بھی ایک نکے جیاں ذرے ورگا ہے اس دی بھی کوئی اوقات نہیں پر منکھ دی بھل منکھ دا اگیان اور جتنا پربل اگیانی ہوے گا اتنا اہنکاری ہوے گا ایک اردو دا مہان شاعر اس نو ایک ہور ڈھنگ نال وی بیان کر دینے علم کے جہول سے بہتر ہے جہول کا علم میں نے یہ درس پایا اپنی بصیرت سے گیان دی مورکھتا دے نالوں بہتر ہے مورکھتا دا گیان علم دی جہالت نالوں چنگا ہے جہالت دا علم اگر تھوڑا بہت کچھ سمجھے ہے عالم ہویا ہے ودوان ہویا ہے اور کئی گنا اس تو ود اہنکار نال بھر گیا ہے تو اہنکار اس گل دا ثبوت ہے جو علم ہے وہ عمل دے چ نہیں اور اے اہنکار مورکھتا تے کھڑا ہے علم کے جہول سے بہتر ہے جہول کا علم گیان دی مورکھتا دے نالوں بہتر ہے مورکھتا دا گیان اہنکار اگیان تے کھڑا ہوندا ہے گیانی بھی اگیانی سمجھو اگر अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,
0: हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे।
1: ये थे सारे भूल के पागल होए फिर देने, कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत लई फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान, हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कव है नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा हुंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी हुंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है, नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। एक हद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जान, इक ना सुरत न सिद्ध अकल सिर, अखर का भयो न लहन, अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दिया अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल दा पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगां दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे तू है की, हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਣ, ਮਿੰਜ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਖਲੜੀ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਏ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪੂਰ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨਕ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆ ਨੜੋ। ਕਪੂਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਜੈਸੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਨਾਲ ਛੂੰਦਿਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆ ਨੜੋ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਖੂਨ ਮਿੰਜ ਮਾਸ ਖਲੜੀ ਅਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੇ। ਪੁਰਖਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਧਨ ਕਿੱਥੇ, ਉਸਦੇ ਵਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਨ, ਔਰ ਤਨ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਾ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈਦਾ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਇਸਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਤਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਸਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਐਸਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए, इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है तूं है तूं है तूं है तूं है, अहंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नु मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर दे लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस वृत्ति ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच, जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ये तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए, ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़ उदी सारी क्रिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है मैं। पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आसलता है, तू ही है, तो ही है, तो ही है। उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तो ही, तो ही, तो ही। एक आलम दा कहना है अज रहा चनार, अज रहा चोनार कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद ओ इमामद न कुनद। जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसदा मिट गया है सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है थां ना मिले। पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है। अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने, आप बैठ जांदा है।

लिए आंदरा रह गईयां, सुट दितियां गईयां, बाकी ते सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईयां कम देच वर्तियां, केवल आंदरा बच गईयां। ए नदाफ चुक के ले गया जो रुई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी दी जड़ी तंद लाई जांदी है वो बकरे दी आंत होंदी है, अंदर होंदी है। ले गया नदाफ उसे धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गई सुन।

उस आंत बेचो सोटे दी जरब नाल निकल रहे है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नू खाक दे अपने मस्तक नू रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तुम देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होता है

सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा परबल निंदक होता है, छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है, मारिया कढ़िया है। ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया, पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिठ होंदी है। जो गुणा दी सिफ तो सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफ तो सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है, पर वो ते निंदा करदा है, गुणा दी निंदा करदा है, क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिठ हो जांदी उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जांदी है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करदे ने, आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे, ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जमदे ने मरदे ने आउंदे ने जांदे ने, दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने, थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं,

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हो। असाद रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसदे कोल, बस परमात्मा दा नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदर है।

नाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे चै, मनुख समय दे बंधन दे चे, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल दे फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे चे। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूटस मोड़े कवन गुने। ए मूर्ख किमें छुटेंगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पिया जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल विच फरिया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नु तड़प रहा है, रात नु तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी। समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत का धार्मिक अध्ययन करता, धर्म की गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा की दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दिया तीन धारावां मनिया ने समय नो तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत भविष्य वर्तमान, माजी हाल मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दिया इन्हां ही तीन धारावां विच। जब मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा तो किथे चला गया, चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड दे, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति पशु पक्षी सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया जिसनु मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छा, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख सदीवी विश्राम, ओह ते मंजिल ते लभना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नूं बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नूं नापिए तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, ये इस छोटी जिही जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समा चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनूं कहिंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापिए। असीम है
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघे उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां। जो समा आण वाला है उदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापते ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम, इह एक दम जो मोह दे चै नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग गए, उते वर्त ले, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है वही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहे शरान बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना की थी, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगां चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखे शरान बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। एक दम जो नकद से इन मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आण वाले दमा दी चिंता च। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सैकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आया। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے میں مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاک مکونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی انہاں دا فرمان، ورتمان وچ ورتدا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچا اٹھ گیا، یہ تو سنسار تو اچا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گئے، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منکھ یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں، بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبو ہی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دیشتے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دیشتے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دیشتے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے، وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال تے بھوش ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے نے، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کردے جا رہے نے. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات اتے جال بن کے منک نو پسا رہے نے. جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے، دستے سہی کیوں چھٹے گا اس جال تو.
सतगुर की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा फाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे च है, सच ते एक सैकंड दे च है, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंग गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहिंदे ने, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया, समा मिटिया ते नहीं समा छोटा हो गया। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमा दा थे मरदाने नू भरोसा है, इतने दम तो मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदा है पातशाह, मरदाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं तो इक्को ही कदम दे भरोसे जी रहा, एक कदम जो पुटे है पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा, समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया, 3-4 दम। दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नूं, पातशाह तुहानूं किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदमी मोहलत मौत न जाना, एकदम जो मुंह दे च है बस इसे ते यकीन है, इन्ना क भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दे डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दे डिग गया मन मिट गया विचार खो गए, उथे एक नु प्रगट होण लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नूं प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी, सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है। और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने सब समय दा तमाशा सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय का तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक
विष्णु जैसा महान सतोगुण, शिव जी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे, अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखे अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दिया यादां विच नहीं। इसनू मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। इसने उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ने ते बेहाल है। इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहे, मुस्तकबिल दी फिकर दे जी रहे, इते भूतकाल दी यादां दे जी रहे, इते माजी दी यादां दे जी रहे। ये वर्तमान दिच नहीं, ये हाल दिच नहीं, और जो हाल दिच नहीं परिश्यन च कहिंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत दिच, ईरान अफगानिस्तान दिच पुछिया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान दिच है कि नहीं, एक प्रभु दिच हैं कि नहीं, कि दो दिच जी रहे हैं। सपना है जिन्ने देर तक चल रहे है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दिच मिट गया। है नहीं है, नहीं है है, स्वप्न है, स्वप्न देच मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था देच मनुख करे। स्वप्न देच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनती है जो जागृत देच। स्वप्न देच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनती है जो जागृत अवस्था देच। पर स्वप्न देच मिलाप होया है, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आती है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वप्न इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहने नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वप्न अवस्था विच नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था विच जो संसार है वो जागृत अवस्था विच नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वो स्वप्न अवस्था विच विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था दे संसार है वो जागृत विच खत्म हो जाता है। तो हुण किसनू सत कहिए ते किसनू मित कहिए, किसनू कहिए है ते किसनू कहिए नहीं है,
ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਾਦ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਖੋਏ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਸੁਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਐ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਤੂੰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਪ ਭਰਿਆ ਸੁਪਨ, ਸੁਖ ਭਰਾ ਸੁਪਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਸਵਪਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉੱਠਣ ਉਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ, ਹੌਕੇ ਨੇ ਤੋ ਹੌਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ
सौ जुगे समाने रैन भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगा वर्गे हो गए, नहीं लंघदे नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा लखां साल वर्गा नहीं लंघदे, इन्ना लंबा हो गया कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने रैन भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगा वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत नु इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतीश जैसे विचारक ने कह देता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नू दस दिया तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनू चार साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नू मनिया नहीं, इसे गुनाह करके वो मैनू हमेशा लई नरक, हमेशा लई। और ऐसा नरक जिथे जंबूरां नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दलदल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ए विचारक कहिंदा है फिर उस खुदा नू रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है। ते बहुत सख्त है, ते बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा है, नहीं लंघदा नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद दे काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे एक क्षण देच एक दम देच भूत खो गया, भविष्य खो गया, अकाल प्रगट हो गया, काल ते खत्म हो गया। लेकिन बहु गिनती मनुखी दुनिया दी काल देच जी रही है। मनुख दे कोल सिमरति है, इस सिमरति कदी अगे जांदी है, कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी। किस तरह मिटे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहा है, भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा बहुत लंबा। चिंतत ही दी से सब को है, सारी चिंता विच दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलणगे, उन्हां नूं भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य दी चिंता दे च। जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है,
भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इस नुचेत है, गुजरिया हुआ कल कैसे सी, गुजरिया हुआ साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने आने वाला कल किस तरह होवेगा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल की जब जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादा नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी की सिमरती ये शक्ति ज्यादा होंदी है, उस जन्म की दीवार नु तोड़ के अगले जन्म च भी पहुंच जाती है, पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादां मासी दियां भूतकाल दियां यही बोझ मनुख ढो रहा है, इसी बोझ दे थले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरदा है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमी आप दे कन्ना विच होकियां दी आवाज पई, जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए थे नंद लाल, नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है, गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमां ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है, हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, 10 क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है। तो नंद लाल सोचदे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पादशाह मैं शायर हां कवि हां आप दा अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी प्रवास भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी प्रवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है। चल तू अपने तखयल दे आधार ते कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है, रंगश कबूद कर दिले अज पुरुष और आर साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे बादशाह मेरे तड़पे हिरदे चो जिहड़े होके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। पातशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले तो जी रहे हैं, अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन, काल खत्म हो गए अकाल प्रकट हो गए, अकाल महा आनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है, काल भूतकाल दियां यादां ने, पर अकाल ना भूतकाल दियां यादां ना भविष्य दियां चिंतावां, परम आनंद प्रगट हो गया, अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहिंदे ने
दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारे हो, वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकता है, जो भविष्य दियां चिंतावां दे डुबिया होया है उसनों किवें सियाणा आख्या जा सकता है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे जी रहा है, अकाल दे जी रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी ते सतगुरां दी बाणी फरमान कर दी है, काल जाल जम जो हो न साके सच का पंथा ठाठ्यो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर दे ने, अकाल है अजाल है, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल, समस्यावां ते भविष्य दियां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईयां सारियां समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें, अकाल दी याद काल नु मिटा के रख देंदी है। अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके सच का पंथा ठाठ्यो।

इस युग दे मालिक, कलयुग दे अवतारी पुरुष, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा वक्त दी रूप रेखा खिचदा होया ए महावाक, ए महासंदेश, ए महान उपदेश। मनुख दे दिल दिमाग दे उते जद भी प्रभाव पैंदा है, माहौल दा, वातावरण दा, समय दा, मौसम दा, शरीर प्रभावित होंदा है मौसम तो, मन प्रभावित होंदा है बैरूनी माहौल तो। एक घर दे कोई मनुख चलाना कर गया है, लाश पई है, चारों पासे रुदन हो रहे है, पर कोई खुश खरम मनुख, खुश तबीयत मनुख किसी कारणवश अगर उस घर दे प्रवेश करे, अपने हास्य नु प्रगट नहीं कर सकेगा, उस दियां भी अखां छलक उठनगियां। ओ जो बहुते मनुख अखां छलका रहे ने, हंजू वग रहे ने, इना बाहर दे हंजुआं दा इतना प्रभाव है किथे मनुख हस नहीं सकेगा। एक व्याह शादी दा घराना है, सेरे सजाए जा रहे ने, मंगल गीत गाए जा रहे ने, मंगल धुनिया वज रही ने, सुंदर वस्त्रां नाल बराती सजे हुए ने, सुंदर पकवान नाल चारों पासे दा वातावरण सुगंधित है, महक डुल रही है। ऐसे माहौल विच अगर कोई गमगीन मनुख अपनी अखां तो हंजू कढ़ना चाहे, नहीं कढ़ सकेगा। वातावरण ने प्रेरणा है, माहौल ने असर पाना है, मौसम दा असर तन ते पैंदा है। शीत लहर चल रही है, मन प्रभावित होंदा है, लू चल रही है, मन तन प्रभावित होंदा है। मौसम खिजां है या मौसम बहार है, शरीर लाजमी अंदोलत होंदा है, लाजमी प्रभावित होंदा है। खुशी दा घराना है या मौत दा घर है, बाजार है या शमशान घाट है, मनुख दा मन इस सारे माहौल तो प्रभावित होंदा है। कोई संगत है, सतसंगत है, हो ही नहीं सकदा कि मन प्रभावित ना होवे। जैसे असह सर्दी होवे, बहुत शीत लहर होवे, तो उस तो बचण दा असी उपराला करदे हां। लू चल रही है, गर्मी सीमा तो अगां टप गई है, असी शरीर नु सुरक्षित रखण लई उपराले करदे हां, उद्यम करदे हां। इस तरह ही आदि काल तो अवतारी पुरुष कहंदे रहे ने, जिथे मन ते बुरा प्रभाव पवे, जिथे मन डेंदी कला चला जावे, उस माहौल दे प्रभाव तो बचण दा उपराला करो। तो कुसंगत तो बचण दा उपराला है सत्संग। अपवित्र माहौल तो बचण दा इको एक वसीला है पवित्र वातावरण, पवित्र माहौल। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, ऐसा होवे कि पवित्र थां कोई लभे ही ना, ते चारों पासे ही अपवित्रता होवे, ऐसे दौर दे मनुख अपने मन नू किस तरह बचावे। इकबाल ने भी कह देता है, दरमियाने कारे दरिया, तख्ता बदम करदा अमी, बाजनी गोयन के दामन तरमकुन, होशियार वास। तू लकड़ दे तख्ते नाल मैनू रस्सियां नाल बन दिता और दरिया दे सुट दिता, उपरों कह रहे हैं डुबना।

0: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे
1: गुरु रूप सत्संग जियो फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के कामी तो की है मैं की हां यदि वजाहत भगत सिरमौर श्री रविदास जी बयान कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के कामी इस युग देच मनुख दा जेड़ा औगुण प्रधान है उसका जिक्र पै कर दे। हर समय हर युग देच एक औगुण प्रधान आउंदा है, मैं अर्ज कर दें। बाकी औगुण भी होंदे न, वो जेर साया होंदे न, एक औगुण प्रधान आउंदा हर व्यक्ति देच बहु गिनती देच कोई तरह का औगण मनुखता दे अंदर प्रधान होवे 60-70% दे अंदर उस नाल फिर तुलना की जाती है इस युग का औगण केड़ा है। हर युग का अपना गुण होंदा है, हर युग का अपना औगण होंदा है, हर व्यक्ति का भी बुनियादी गुण कोई एक अद आउंदा है, बाकी गुण उहदे जेर साया आउंदे ने। हर व्यक्ति का बुनियादी औगुण एक होंदा है,